ज्ञान गुर कहयो विचार कठो श्रीखंड सतगुर किया दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया

जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह तुद जी से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ।

हमरी करो हास दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरी दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हास दै मोहे बचावहो। दुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन को आज संगरिया।

निरंकार का चिन्त नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। कुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा।

दुष्ट दोख ते लिहो बचाई सवैया। पाए गहे जबती तुमरे तबती को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। चिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार।

आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया, सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावने आईयां, शब्दों ता गावहु हरि केरा, मन जिने वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया।

जिको खावे जिको पुंचे तिसका हुए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित राखे और तारो।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिम

प्रत्यक्ष हृदय गुर अर्जन कै और पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। कंद चकोर प्रीत है लाए तार निहाले। चकवी सूरज हेत है मिल होन सुखाले। नेहो कवल जल जानिए फिड़ मोह वे खाले। मोर बबीहे बोल दे वेख बदल काले।

ओ निबह नले तो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसे गुरु

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आखे लाख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे है सो कचन कच महला पहला
1: वडी वडियाई जा वडा ना वडी वडियाई जा सच निया वडी वडियाई जा निश्चल था वडी वडियाई जाने आला वडी वडियाई बुझे सब भाओ वडी वडियाई जा पुछना दात वडी वडियाई जा आपे आप

पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़ी है जदे बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जदी आर जा पड़ी है जेते सास नानक।

0: कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार, कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार, किस नाल की चाहे दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माख्य कूड़ बेपूर, नानक बखाने बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
1: सच ता पर जानिए जारी दे सच्चा होए, कूड़ की मल तेरे तन करे हछा तोए, सच ता पर जानी जा सच तेरे प्यार, नाउ सुन मन दसिए ता पाए मुख द्वार, सच ता पर जानी जा जुगत जाने जियो, धरत काया साध के विदे करता बियो, सच ता पर जानी जा सिख सची ले, दया जाने जी की किछ पुन दान करे, सच ता पर जानी जा आत्म तीर्थ करे निवास, सत गुरु नु पुछ के वह रह करे निवास, सच सबना होए दारू।

0: पेताल बियो बीज पत ले गए अब क्यों वेदाल जेक होए ता उगवैरती हुलत होए नानक पाहे बाहरा पूरे रंग न सोए पै विच हुम चढ़ाई है शर्म पाहो तन होए नानक भगती जे रपै कूड़े सोए ना कोई महला पहला
1: लब पाप दे राजा महता कूड़ हुआ सिकदार काम ने सद पुछिए बह बह करे विचार अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाहे परे मुर्दा ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार ऊचे कुक हैं वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत जो संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवा वह मंगे मोख द्वार जति सदा वह जुक न जाने छड़ वह करवा सब को पूरा पे होवे घट ना कोई आख है पत प्रवाणा पिछे पाई है ता नानक बोले।